0: ये है लाइका रेडियो।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल एट protected. Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
3: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
4: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Leica Radio Sales on 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk.
3: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे,

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोहन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भखाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

आहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी हृदय सिद्ध।

कर कर वेखै सृजनहार। नानक सच्चे की साची कार, आदेश दिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोला खोए लख होवै लखवीस।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच्छ

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Lester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October, Bapore 1-4 at Avanti Field School, Lester. 1-10 varashna kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call Beaches 07957477330. Masti, music and a full on Garba fun. Radio partner, Laika Radio.
2: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय.
0: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरेबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबाडोस. खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरेबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं. प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन, ट्विन शेयर. सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.
3: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
4: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
3: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
5: एशियन अचीवर्स अवार्ड्स फ्राइडे सितंबर 18th एट लंदन हिल्टन पार्क लेन. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो ग्रेटर लंदन.

0: ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: अजी देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओह काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: आप यहाँ आए इसलिए

0: आजादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती है आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: दादा
1: सुनो तो, मोना सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए,
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है,
1: देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, मेरा एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार को निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: Listen to the freshest hits added daily on Lyca Radio.
1: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
0: ये है लाइका गोल्ड

0: Radio. Ritu Sharma.
1: Yes, good morning. Namaskar. Swagatam. आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ऋतु शर्मा एक बार फिर से आपका साथ देने के लिए हाजिर है और आपको सुनवाने के लिए भी एक नहीं दो नहीं ढेर सारे क्लासिक
2: लाइका रेडियो.
0: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. The Ritu Sharma Show, featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Leica Radio.

0: मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में था ये गाना, जिसे लिया था फिल्म हम किसी से कम नहीं। और उससे पहले आपने काला पत्थर फिल्म का गीत सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। और लीजिए, इन दो गीतों के साथ आज के शो की शुरुआत हो गई है और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और मैं हूं ऋतु शर्मा, आप सबका साथ देने के लिए हाजिर हूं अब से लेकर दोपहर के पूरे एक बजे तक। मौसम आज अच्छा है, हल्की हल्की ठंडक है और आपके मैसेजेस बता रहे हैं कि आप सब खुश हैं, चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं और मेरा साथ भी दे रहे हैं। बस और क्या चाहिए, मजे करते रहिए। ऐसे ही कोशिश करूंगी अच्छे अच्छे गीत सुनवाती रहूं। और आज है सैटरडे का दिन, 5 सितंबर है आज, और आज का दिन खास है क्योंकि आज भारत में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। और ये डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे एंड 1962 में वो देश के दूसरे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट बने थे। और जब वो राष्ट्रपति बने थे तो जो स्टूडेंट्स थे और उनके जो चाहने वाले थे, उन्होंने उनका जन्म दिवस मनाने की इच्छा जताई। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि मेरे जन्मदिन को व्यक्तिगत रूप से मनाने की बजाय मैं चाहूंगा कि इसे शिक्षकों के सम्मान में एज ए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात होगी। और तब से हर साल आज ही के दिन 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर टीचर्स डे मनाया जाता है। और जानते हैं 1954 में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो अगर मैं कहूं कि आज भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो £1 के बदले में आज आपको मिलेंगे 127.15 भारतीय रुपए। और याद रखिए, ये ट्रांसफर हमेशा की तरह आपको करवाना होगा via SBI branch online और by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. Four stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Amantrika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 p.m. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: It's December. Thand ko bolo, goodbye.
3: Join Maharaja Tours on a 14-night Caribbean cruise departing 6 December with direct Virgin flights from Heathrow to Barbados. Khoobsurat beaches, sunshine or 8 amazing Caribbean islands. आपका इंतजार कर रहे हैं। Prices from just £1,499 per person, twin share. Seats limited है तो आज ही बुक कीजिए। Visit maharajatours.co.uk or call 07956154846.
4: The wait is finally over.
5: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
4: Mirzapur is coming to the big screen.
6: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है, ना सियासत से।
4: Power, revenge और Mirzapur की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल।
7: अबे कालीन भैया है वो, किंग ऑफ Mirzapur।
4: पंकज त्रिपाठी एज कालीन भैया, अली फजल एज गुड्डू पंडित और Mirzapur के आइकॉनिक कैरेक्टर्स अब सिनेमा में और भी बिगर। Mirzapur द मूवी इन सिनेमाज नाउ।
6: Mirzapur में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
9: Lester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October, Bapore 1 thi 4 at Avanti Field School, Lester. 1 thi 10 varsh na kids mate entry just £5. Tickets available from Ticket Source or call PHL 07957477330. Masti, music and a full on Garba fun. Radio partner, Laika Radio.
1: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group.
10: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit HeartyHanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit HeartyHanks.com now.
11: Yeah, like a

0: यस इस बार लता मंगेशकर का साथ दे रहे थे अमित कुमार और ये थी 1981 की फिल्म लव स्टोरी जिसमें आदी बर्मन का म्यूजिक था और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क जहां पर ऋतु शर्मा है आपके साथ.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: To chaliye aapke dheron messages mile hain, ek nazar un par ab dal li jaye. सो थैंक यू राजेश जी, आपको मैसेज मिला है, कहते हैं आपको हैप्पी वाला शनिवार, आपको भी. और आप सब पूछ रहे हैं कि जन्माष्टमी कैसी रही. अरे बहुत अच्छी रही, बहुत मजा किया. कल मैं हरे कृष्णा टेम्पल गई थी और हमारा जो टाइम स्लॉट था वो रात को 9:30 का था, लेकिन बावजूद इसके मुझे लाइन में लगकर 1.5 घंटा वेट करना पड़ा और हम लोग काफ़ी रात हो गई वापस घर आने में. बट बहुत मज़ा आया और जब मेहनत के बाद यू नो खड़े रहकर लाइन में आपको भगवान के दर्शन करने को मिलते हैं तो उसका मज़ा कुछ अलग ही होता है. और कल क्या खूबसूरत सजाया था उन्होंने भगवान को, मज़ा ही आ गया. तो आई एम श्योर आपकी भी जन्माष्टमी बहुत ही अच्छी रही होगी. सो थैंक यू राजेश जी आपके मैसेज के लिए. और यस, आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थ एनिवर्सरी है और इसीलिए आज उसे टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है. हरी श्रोता जी स्वागत है. रोजी रजीना गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग हिमांशु पटेल जी, हंसा जी, जासू जी, ललित छत्रिसा जी कहते हैं दो बैक टू बैक गाने सुनकर मजा आ गया. थैंक यू सो मच. थैंक यू अरुणा जी, महेंद्र बाजारिया जी, मालती जी, भारत गंगाराम जी, ज्योति, वंदना, मीना जी, हर्जन जी, हरीश खत्री जी, गिरीश जी, आपने अपने कान्हा की फोटो भेजी है. क्या सुंदर फोटो है, कान्हा तो हर रूप में सुंदर लगते हैं. स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में. फारूक मोहम्मद जी आप हमें सुन रहे हैं. विजय गुडूरी जी थैंक यू, सटन में आपका प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आपने जो अच्छे शब्द मेरे लिए लिखकर भेजे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमेशा ही साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया. और आपने लिखा है कि जिंदगी में जलन और घमंड से हमेशा दूर रहो क्योंकि जलन सुकून छीन लेती है और घमंड इंसानियत मिटा देता है. और ये बात 100% आपने सच कही है हमेशा की तरह. थैंक यू वियना से अनिल सोनी जी, साक्षी थैंक यू, मृदु जी, सलमा जी कैंट से मिसेस शेख, तोची जी, चंदू जी, चंदू शाह जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और अब इतने प्यारे मैसेजेस भिजवाई दिए हैं. प्रज्ञा स्वागत है आपका एंड उल्लास ऑफ कोर्स. तो अगला ये खूबसूरत गाना क्यों ना मैं आप सबके नाम कर दूं क्या. चलिए फिर.
1: ये है लाइका रेडियो टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: बिमल रॉय की ये फिल्म वैजयंती माला और दिलीप कुमार की एक्टिंग के कारण तो हिट हुई ही थी, लेकिन साथ ही साथ इस फिल्म के हिट होने में बहुत बड़ा योगदान इस फिल्म के म्यूजिक का था और जिसे दिया था सलिल चौधरी ने। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज सलिल चौधरी, जिन्हें प्यार से सब लोग सलिल दा कहते हैं, आज ही के दिन 5 सितंबर को 1995 में, जब उनकी एज 72 यानी कि 72 ईयर्स की थी, इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: उनके कुछ गाने ऐसे हैं जिनके कारण फिल्में हिट हुई हैं। आपको बता दें कि एक फिल्म आई थी दो बीघा जमीन, जिससे उन्हें बहुत पहचान मिली, और इसके अलावा उनके गाने आनंद फिल्म का वो गाना कहीं दूर जब दिन ढल जाए, क्या खूबसूरत गाना है, या फिर मधुमति का ये गीत जो मैंने आपको सुनवाया, या फिर परख फिल्म का वो गीत ओ सजना बरखा बहार आई। कई सारे गाने हैं जो अमर हैं, जिनमें सलिल चौधरी का संगीत है। और आपको बता दें कि उन्होंने न सिर्फ हिंदी भाषा में बल्कि बांग्ला में, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, गुजराती सहित 13 से अधिक भाषाओं में संगीत दिया। और कहते हैं जो मलयालम सिनेमा में उन्होंने संगीत दिया वो आज भी उनका स्वर्णिम काल माना जाता है। कुछ बातें जरूर बताऊंगी और इनके गाने आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स में सुनवाऊंगी, लेकिन आज की यादें में कौन होगा वो मैं आपको बताऊंगी अब से बस थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले थैंक यू कह देती हूँ परविंदर मथारू, आपको हमारी आंटी जी स्वागत है आपका, गुरुदेव गांजा आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू, स्वागत है आपका इस शो में। और जासू जी, फरीदा गुलाम अली, महेंद्र बजारिया जी, आपका कहना है कि मधुमती का गाना हमें दे दो, चलिए हमने ये गाना आपके नाम पर किया। और इसके अलावा किशोर लाडवा जी, आप भी शो सुन रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस शो में।
1: This is Leica Radio. Across the Leica Radio network, this is Ritu Sharma. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप दुबई घूमने जाना चाहते हैं या फिर कहीं हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथॉल ट्रैवल को कांटेक्ट कीजिए, उन्हें फोन कीजिए 02085748410 पर, और साउथॉल ट्रैवल इज इट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. The Ritu Sharma Show on Leica Radio. Leica
2: Radio. मास्टर फैल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 से शुरू। और हर्जमैन बटर घी 20 केजी सिर्फ 10.99।
3: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
4: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre, Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
5: I am happy, Wally, feeling late.
2: It's back and it's bigger.
5: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
2: On Sunday, 1st November 2026 at the Ramgarhia Centre.
5: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
2: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
6: We're finally going home for the wedding.
7: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
8: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
7: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
8: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
7: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
8: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy. Powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Da New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Da New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
9: Khakra crunch, bhakri munch, chikki sweet, papad beet, pickles heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
10: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
9: Jaimin Foods desi cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
2: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
11: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजें 90s की फिल्म फरेब से लिया था ये गाना। और आज की यादें में आप 90s के शायद कुछ या फिर कहूँ 80s और लेट 70s के ढेर सारे गाने सुन पाएंगे, क्योंकि आज हम जिन्हें याद कर रहे हैं यादें में, उनका नाम है राजेश रोशन। जी हाँ, नहीं राकेश रोशन, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, दोनों भाइयों ने बिल्कुल एक जैसा नाम रख लिया है। आज मैं बात करने वाली हूँ राकेश रोशन को, जो हीरो बनकर फिल्मों में आए हैं, तो आज उन्हें याद करेंगे यादें में। और इसके अलावा आपके मैसेजेस तो लगातार मिलते ही जा रहे हैं। थैंक यू गुरुदेव गांजा, कहते आज तो खाने पीने की बातें कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आज, क्योंकि कल तो फास्ट था तो मैंने मना किया था और आप सब ने मेरी बात भी मानी, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आज आपने समोसे की फोटो भेज दी है, तो क्या बात है, अब समोसे तो सभी को पसंद होते हैं। और आज 5 सितंबर है, वर्ल्ड समोसा डे भी है, तो बिल्कुल समोसे की फोटो आप आज भेज सकते हैं, कोई बात नहीं है। और एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज के प्रोग्राम में, यानी कि सेकंड वाले आवर में, यादें में हम याद करेंगे आज किसको, राकेश रोशन को। यस, राकेश रोशन को।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज जो 1 pound आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए and 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold rate is 105.6 Bharatiya Rupai.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
2: Leica Radio.
1: Are you listening? Leica Radio is now available across Derbyshire on DAB. Leica Radio.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. One performer.
4: Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover, live UK Tour 2026.
3: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
3: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: London, get ready for an unforgettable night.
6: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
5: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
6: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
5: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
6: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
5: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner, Leica Radio Network.
6: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11.
5: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place.
5: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
7: Danube 11, 11. Danube Properties.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागस एंड सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

0: किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, म्यूजिक बाय राजेश रोशन और फिल्म बाय राकेश रोशन, यानी कि इन दोनों भाइयों ने मिलकर बॉलीवुड इंडस्ट्री को कमाल की फिल्में दी हैं, कमाल का म्यूजिक दिया है। और हम जानते हैं कि इनके पिता श्री रोशन एक जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने भी बहुत खूबसूरत म्यूजिक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दिया है। तो अगर ये कहूंगी कि इस परिवार का कॉन्ट्रीब्यूशन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और देखिए, ऋतिक रोशन भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं फिल्मों में। लेकिन आज हम राकेश रोशन की बात कर रहे हैं, जो फिल्मों में तो पहले हीरो बनकर आए, और आप सब जानते हो शायद कि हीरो बनना इनकी चाहत थी या नहीं, लेकिन मजबूरी बहुत थी, क्योंकि परिवार में इतनी गरीबी थी कि घर चलाने के लिए क्या किया जाए। और इनका कहना था कि उन्हें कुछ और ज़्यादा आता नहीं था, क्योंकि फादर म्यूज़िक डायरेक्टर थे और घर में फिल्मों से ही कनेक्शंस थे, फिल्म से जुड़े लोगों को ही ये जानते थे। और जब सबको पता चला कि रोशन जी नहीं रहे और घर में छोटे बच्चे हैं, मतलब इतने बड़े नहीं हैं, टीनेजर बच्चे हैं, घर का खर्च कैसे चलेगा। और राकेश रोशन घर के सबसे बड़े बेटे थे, तो उन्होंने जाकर सबसे कहा कि जो भी काम हो मुझे दीजिए, मुझे अपने घर परिवार के लिए पैसा कमाना है, चाहे वो हीरो का हो, चाहे हीरो का नहीं हो, चाहे छोटा सा रोल हो, चाहे विलन का रोल हो, कुछ भी हो, मुझे काम चाहिए ताकि मैं अपने घर वालों का, अपने भाइयों का, अपनी माँ का पेट पाल सकूँ। और इस तरह से राकेश रोशन ने फिल्मों में एंट्री ली। और उस समय इन्हें शायद नहीं पता था कि आगे जाकर ये इतने बड़े हो जाएंगे कि आज हम देखिए यादें में इन्हें याद करेंगे, और ये कईयों के फेवरेट हीरो होंगे, कईयों के फेवरेट डायरेक्टर होंगे, और कई लोगों के ये फेवरेट ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी फिल्में हमारी इंडस्ट्री को दी। चलिए एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना इनकी फिल्मों का सुनवाती हूँ, क्योंकि आज यादें में हम राकेश रोशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि गलती से अगर राकेश की बजाय राजेश बोल जाऊं तो समझ लेना कि मैं राकेश रोशन की बात कर रही हूँ।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज £1 आपको देगा 127.15 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए, ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online और by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Ye hai Laika Radio. Laika Radio. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
2: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 से शुरू। और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg Sir 1099.
3: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Cell Leicester LE54UN.
1: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
4: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949 250376. We're finally going home for the wedding.
5: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
6: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
6: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
6: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
8: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
1: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group.
9: Bollywood's biggest 90s songs.

0: बहुत ही सुंदर गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। और आज हम बातें कर रहे हैं राकेश रोशन के बारे में, और ये गाना उनकी फिल्म खट्टा मीठा से लिया था। हम सब जानते ही हैं कि राकेश रोशन को लेटर के से कितना प्यार है, और जानते हैं ये प्यार क्यों हुआ। दरअसल शुरुआती दिनों की कुछ फिल्में सुपर फ्लॉप रहीं, मेहनत करने के बाद भी फिल्में नहीं चली, और जब इन्होंने आखिरी फिल्म बनाई खुद गर्ज और सोचा कि अगर ये नहीं चली तो मैं इसके बाद फिल्में नहीं करूंगा, और उस फिल्म का नाम कैसे था बस फिर किया था, इसे कहते हैं ना अंधविश्वास। उन्हें लगा कि भाई कैसे अगर मैं लेटर से फिल्में बनाऊंगा तो मेरी फिल्में हिट होंगी, और ये उन्हें किसी शुभ चिंतक ने सलाह दी थी कि अपनी फिल्मों का नाम के अक्षर से शुरू करें, और उसके बाद तो उन्होंने जो भी फिल्में बनाई कमाल ही हो गया, सारी की सारी फिल्में हिट होती चली गई। लेकिन अब मैं आपको जिस फिल्म का गीत सुनवाने वाली हूँ उसका नाम कैसे नहीं शुरू है वो फिल्म पी से शुरू है, पराया धन है फिल्म का नाम, जिसमें उनके साथ काम किया था खूबसूरत हेमा मालिनी ने।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: आरडी बर्मन का म्यूजिक था इस फिल्म में और राकेश रोशन और हेमा मालिनी हीरो हीरोइन थे और आज राकेश रोशन को ही फिल्मों में यादें में हम याद कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि जब राकेश रोशन अपने बेटे को फिल्मों में लॉन्च करने जा रहे थे तो उनके मन में एक डर सता रहा था। उन्हें यही लग रहा था कि जिस तरह से लोगों ने उन्हें एज ए हीरो एक्सेप्ट नहीं किया, कहीं ऐसा ही उनके बेटे के साथ ना हो। पूरी उन्होंने कोशिश की, राकेश रोशन को कहा पहले कि नहीं तुम हीरो की तरह तैयार होकर आओ, बॉडी वॉडी बनाओ, अपना लुक अच्छा करो और फिर मैं तुम्हें पूरी तरह से लॉन्च करूंगा, क्योंकि वो जरा सी भी कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। क्योंकि अगर एक बार जनता ऋतिक रोशन को नकार देती तो फिर दोबारा उन्हें इस्टेब्लिश कर पाना राकेश रोशन के लिए बहुत मुश्किल होता। और कई लोगों ने उनसे कहा भी कि क्या तुम अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हो, ये नहीं चलेगा, तुम क्यों नहीं बड़े स्टार को लेते हो, नहीं तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा, फिल्म नहीं चली तो। लेकिन राकेश रोशन ने कहा कि नहीं, मैं ये ट्राई ज़रूर करूंगा अपने बेटे के लिए, क्योंकि अगर ये चल गया तो फिर मेरी आगे की ज़िंदगी और मेरे बेटे की ज़िंदगी भी अच्छी चलेगी, सफल हो जाएगी, आगे अच्छा काम हो पाएगा। और इसके चलते उन्होंने रिस्क लिया और देखिए उन्होंने जब अपने बेटे को लॉन्च किया तो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और तब उन्हें जाके तसल्ली हुई। नहीं तो वो ये सोच रहे थे कि कहीं मैं भी अपने बेटे के लिए ऐसा साबित ना हो जाऊं और वो मुझे ये ना कहे कि आपने मेरे लिए फिल्म बनाई और देखिए मेरा करियर डूब गया। इस तरह की बात राकेश रोशन सुनना नहीं चाहते थे। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, कमाल की गाने मैं आपको सुनवा रही हूँ और आप सबके मैसेजेस मिलते जा रहे हैं कि ये गाने हमको पसंद आ रहे हैं। तो चलिए एक और बहुत ही खूबसूरत संगीत बजने के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
0: तो आपको याद दिला दें कि द दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो जिसे आपके लिए लाए हैं NKN मीडिया वापस आ गया है आज और कल, यानी कि 5 और 6 सितंबर को एट लंदन हिल्टन पार्क लेन, जहां पर सेलिब्रिटी गेस्ट भी आ रहे हैं, अरबाज खान, जैकलिन फर्नांडिस, चित्रांगदा सिंह एंड नरगिस फाकरी। आप उनसे मिलना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, फ्री एंट्री है। रजिस्टर कीजिए एट nkpropertyexpo.com पर, आई रिपीट nkpropertyexpo.com पर, और उसके एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स है लाइका रेडियो। और थोड़ी ही देर में हम आपकी बात भी कराएंगे उनसे जो हमारे साथी वहां पहुंचे हैं, आंखों देखा हाल कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है।
2: दिस इज रितु शर्मा, बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: तो याद दिला दे कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ गया है और उसका टाइटल है मोहम्मद वकील स्पेशल, जिनसे बात की है रवि शर्मा ने। तो आप इसे सुन सकते हैं लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट पर, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट को सुन सकते हैं स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहां जाकर।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर, गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। Leica Radio. We're live at the Dubai Property Expo at Hilton Park Lane, London. Leica.
1: Four stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Aman Threeka, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7pm. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Birmingham. Get ready as Surinderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Dirsi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed Dirsi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
4: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
5: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
4: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
5: Also explore 2026 cruises
4: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybound Travel on 01162 167 225. We're at all protected.

0: Shah Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Maharaja Tours ke saath is November explore kijiye Singapore, Malaysia aur Thailand, Sentosa Island, Batu Caves, Genting Highlands, Bangkok ke floating markets aur beautiful temples, phir Pattaya aur Coral Island ka maza. Fantastical Far East from sirf £2,799 per person. Flights, 4-star hotels, Indian khana aur amazing excursions. Sab included. Visit maharajatours.co.uk or call 07956154846.
2: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
3: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
2: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
4: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन
5: कथास YouTube
6: इस बार बिग बॉस दे रहे हैं सभी घर वालों को एक नहीं दो दो चांस
5: सो सेफ खेलने का नो नो चांस
6: बिग बॉस में इस बार मिलेगा बरदान और एक्स्ट्रा जीवन दान कथास तुम जान
7: Big Boss 20, starting from Sunday the 6th of September, only on Colors TV. Sky Channel 706, Virgin Media 826, EE 396.
8: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-18. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
4: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
9: तो चलिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज द दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो है जिसे लेकर आए हैं एनकेएन मीडिया और आज और कल ये होने वाली है एट लंदन हिल्टन पार्क लेन में और जहां पर हमारे कुछ साथी पहुंचे हुए हैं और हमने आपसे कहा था कि थोड़ी देर में उनसे बात करवाएंगे तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं
4: We're live at the Dubai Property Expo at Hilton Park Lane, London.
9: हमारे बॉस राज बद्धन आइए उनसे बात करते हैं कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है हेलो राज
10: इतना लंबा डिलाई व्हाट वाज हैपनिंग देयर आपको याद नहीं कौन किससे आप बात कर रही हो
9: अरे मुझे याद है क्या कहूं बताइए क्या चल रहा
10: है so we're here at the Dubai Property Expo brought to you by NKN Media and this is at London Park Lane Hilton so we are here all day today it's absolutely fantastic so अभी तो शुरू होने वाला है there's a ribbon that is just being set up now red ribbon which is being set up because Nargis Fakhri is about to walk in about 12 o'clock in the afternoon so she's going to be here in the next 20 minutes or so and then उसके बाद it is complete शुरुआत so it's going to be a fantastic day and in fact a whole weekend full of Dubai property celebrations and there's a lot of developers here so there's more developers that they've had before in the last year so there's Danube that we work with very very closely there's Emaar there's also Futum as well there's Dugasta and there's a lot of them they're all here so we're going to be doing lots of coverage for our socials so do check them out on Leica Radio and Leica Goals Instagram and you get to know exactly the buzz that is being created here so Ritu aap bhi aa jana na after the show have a good time with us here
9: haan main try karti hu anuj ke sath hum dono aa jate
10: very nice yeah I think make a plan come here and come and see the experience it is beautiful it's like basically Dubai being brought here to London so it's nice feel all together
9: okay ट्राई करते हैं थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन राज
10: थैंक यू सो मच
9: टेक केयर बाय बाय
4: इट्स समर ऑन द लाइका रेडियो नेटवर्क

0: ये थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजें, और हृदय नाथ मंगेशकर का म्यूजिक था इस फिल्म में। राजेश खन्ना और रीना रॉय के साथ इस फिल्म में राकेश रोशन भी थे, जिन्हें आज की यादें में हम याद कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको हम याद दिलाते चलें कि मर्सिडीज बेंज वेंस की ओर से ये संदेश है, जिसे हमारे लाइका रेडियो नेटवर्क के सहयोग से आपके सामने पेश किया जा रहा है। जब आप खुद का बिजनेस चलाते हैं तो आपकी वैन सिर्फ आने जाने का साधन नहीं होती, आपकी रोजी रोटी और इज्जत सब कुछ उस पर निर्भर करता है। और इसी सोच के साथ मर्सिडीज बेंज वैन्स आपके लिए लाया है अप टाइम प्रॉमिस। आपके बिजनेस को लगातार चलाते रहने के लिए अनेक फायदों का एक पैकेज है, जैसे कि 24/7 रोड साइड असिस्टेंट, ज्यादा देर तक वर्कशॉप का खुला होना, गाड़ी की रियल टाइम मॉनिटरिंग और भी बहुत कुछ। यानी कि आपकी वैन के खराब होने पर आपके बिजनेस को बिना रुके आगे बढ़ाते रहने के लिए आपको जो कुछ चाहिए वो सब आपको एक ही जगह मिलेगा। मर्सिडीज बेंज वैन्स आपके साथ है। आज ही मर्सिडीज बेंज वैन्स सर्च करें और अप टाइम प्रॉमिस के बारे में जानें। नियम और शर्तें लागू होंगी।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो £1 आज आपको देगा 127.15। आज भारतीय करेंसी अपडेट बताना है क्या कर रही है तू। आज £1 के बदले में आपको मिलेंगे 127 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तान रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टका।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: The gold rate is 105.6 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma. LIKA Radio. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. Ready UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London. 31st October, Mattioli Arena Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS. For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, LIKA Radio Network.
2: To buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
3: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
4: Dubai is the place. 11,
3: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
4: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
6: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
5: डेजर्ट सफारी,
6: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
5: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
6: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
7: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
8: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
7: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
8: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
7: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
8: Exclusive radio partner, LIKA Radio Network.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
9: List up. Navratri ni dhammakedar raton mate thai jao ready. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026. 11th to 20th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 PM at Avanti Field School, List up. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio partner, Laika Radio.
10: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Laika Radio Greater London.
11: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
3: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
11: Get your free tickets. Book now using the promo code LAIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
3: Exclusive media partners LAIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
12: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the time. Take my phone. Why do I need to take my...
13: Here, boy!
14: Coast Guard, we're stuck.
15: Okay, help's on its way.
14: Hold on, mate.
16: Shoes tied. Phone.
17: Back before dark, love. Okay.
18: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please respect the water.
10: Laika Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. The Ritu Sharma Show. Featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Laika Radio. 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. This is the Laika Radio Network.

ये था नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज में गाना, और इस फिल्म को बनाया था राकेश रोशन ने। हालांकि उन्होंने इस फिल्म में काम नहीं किया था, इसमें उन्होंने रेखा को मेन लीड रोल दिया था और साथ में थे कबीर बेदी, सोनू वालिया। और रेखा जी को उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्मों में काम दिया है। उनके लिए उन्होंने एक खूबसूरत फिल्म बनाई थी, वो राकेश रोशन उसमें थे, लेकिन रेखा को उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। और आपको याद होगा कि जब उन्होंने क्रिश फिल्म बनाई थी कोई मिल गया, उसमें भी उन्होंने रेखा को चांस दिया था। यानी रेखा जी के साथ राकेश रोशन का जो ट्यूनिंग है बड़ा अच्छा बैठता है, और अच्छी अच्छी फिल्में दोनों ने साथ में हमें दी हैं। तो आज की यादें में हमने राकेश रोशन को, नॉट राजेश रोशन, राकेश रोशन को याद किया है। और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं कि आपने आज की यादें को पसंद किया है, सो थैंक यू हंसा जी, थैंक यू विजय गुडूरी जी, थैंक यू साक्षी, ये गाना आपको पसंद आया, चलिए आपको डेडिकेट करते हैं। और हमारी संध्या भावसर तो ट्रेन

0: दादा जी की आवाज में हिमालय की गोद फिल्म में था ये गाना, जिसपे थिरक रही है माला सिन्हा। और आप जानते हैं माला सिन्हा ही है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और इस गाने को आप सबने पसंद किया है।
1: ये है Like a Radio Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: सो थैंक यू गुश शरण जी, रजनीश जी, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और गीतों को पसंद कर रहे हैं और मुझे क्या चाहिए, थैंक यू। और इसके अलावा थ्री वर्ड्स गेम चल रहा है, जिसमें आप अपने आंसर मुझे भिजवाते जा रहे हैं। कुछ के आंसर सही हैं और कुछ ने गलत बताए हैं, तो अब मैं कैसे बताऊं, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगी जिन्होंने सही पहचाना है उनका नाम क्या है। और गाना बहुत ही आसान है, आप सुनेंगे तो कहेंगे ओ तरीकी ये गाना था आमिर खान के स्टाइल में। लेकिन फिलहाल मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज सलिल चौधरी की पुण्यतिथि है, आज ही के दिन वो इस दुनिया को छोड़कर गए थे काफ़ी छोटी सी एज में, जब वो सिर्फ 69 ईयर्स के थे और ये हुआ था 1995 में। तो आज उनकी ही फिल्मों के दो गाने ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स में सुनवाऊंगी। पहला गाना उनकी सुपरहिट फिल्म उसने कहा था से लिया है, जिसमें आवाज़ है तलत महमूद और लता मंगेशकर की।

0: सल्लत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गाना फिल्म उसने कहा था से लिया था, जिसमें सुनील दत्त और नंदा थे और इन गीतों को लिखा था शैलेंद्र ने और म्यूजिक था सलील चौधरी का, जिनकी की आज है पुण्यतिथि। अगला जो गाना है वो भी मैंने उन्हीं की फिल्म से लिया था।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो अगला गाना भी उन्हीं की फिल्म से है जिसे मैं बजाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ।
1: दिस इज रितु शर्मा।
0: आपको बताते चले कि भाई अगर आप बिग बॉस के शौकीन हैं तो बिग बॉस का सीजन 20th शुरू हो रहा है कल से, जिसे एक बार फिर से होस्ट करने जा रहे हैं सलमान खान। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं 9:30 बजे से कलर्स टीवी पर दिखाया जाएगा और इसके साथ साथ ये जियो स्टार पर भी दिखाया जाएगा। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जियो स्टार अब लंदन में आ गया है और लाइव स्ट्रीम भी करेगा, 24/7 फीड भी दिखाएगा बिग बॉस की, यानी कि एवरी एपिसोड तो आप देख ही सकते हैं और 24/7 कंटेस्टेंट क्या कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं बिग बॉस हाउस के अंदर। तो जियो स्टार आपको बता दें इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी।
1: द रितु शर्मा शो ऑन लाइका रेडियो।
3: Super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: लीजिए आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का ये था दूसरा गाना जिसे आपने सभी ने पसंद किया और आज हमने सलिल चौधरी के म्यूजिक पर आपको दोनों गाने सुनवाए क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। एंड अमिता जी, भारती जी, विजय गुडूरी जी, रजिंदर राज जी, जासू जी, बहुत सारे मैसेजेस हैं जिन्होंने इन सब गीतों को पसंद किया है और थ्री वर्ड्स गेम भी चल रहा है जिसमें साथियों ने सही सही जवाब दिए हैं और उनके नाम क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीप राजा और दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो पर पहुंचे हुए, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं वहां का हाल कैसा है। हाय दीप, हाउ आर यू?
1: आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू रितु?
0: आई एम नॉट टू बैड। और बताइए वहां पर क्या हो रहा है?
1: It is amazing here. You must come if you can make it. There's lots of people here. There's lots of exhibitors coming. Anything to do with Dubai, absolutely the place to be. Honestly, there's information about Dubai, properties about Dubai. We've got Nargis Fakhri here. We've got so many people. It's really worth coming down.
0: थैंक यू दीप, कोशिश करूंगी कि मैं जरूर आऊं और जो भी हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगी कि आप भी वहां जाइए और दीप से भी, राज से भी और नरगिस फाकरी से भी मिलकर आइए, है ना?
1: Absolutely, in the London Hilton Park Lane. Worth any information you want to know about Dubai, come on down.
0: Okay, thank you दीप, thanks.
1: Thank you Ritu.
0: Bye-bye.
1: Take care, bye.
2: Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
0: और हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो आप साउथ हॉल ट्रैवल को कॉल कीजिए 0208574810 पर। साउथ हॉल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
0: और अब बताते चलूं कि हमारे किन साथियों ने आज सही सही गाने को पहचाना है। तो सबसे पहले जिनका नाम आता है स्वाति बेस बॉर्डर से, आपने गीत को सही पहचान लिया है। नरेन पटेल जी, उल्लास विजय गुनोवा जी, विजय गुडोरी जी, अरवा नॉर्थ हेल्थ में प्रोग्राम सुन रही हैं, आपका जवाब सही है। निम्मी जी, विनोद जी, तोची जी, मनीषा शाह, कुकी किरण जी हैरो से, अयुब चौहान जी, अमर जी, गीता हर्ष जोशी, गुरुशरण जी, उषा खोड़ा, करसन पिंडोरिया जी, गिरीश जी भारत से, दिव्या जी हैरो से और साक्षी, आप सबका जवाब बिल्कुल सही है। और जैस्मीन मुझसे पूछती है What you having for lunch after show? Oh, ये तो सरप्राइज होगा, मुझे खुद नहीं पता मैं घर जाके फ्रिज में से क्या निकालूंगी और क्या बनाऊंगी अभी कुछ आइडिया नहीं है तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन ये जरूर बता सकती हूँ कि जो आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना है वो बस बजाने वाली हूँ आपसे थोड़ी ही देर में।
2: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio. We're live at the Dubai Property Expo at Hilton Park Lane, London.
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ £1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ £29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्जमन 20 kg sir 10.99.
4: Falcon Cash and Carry 82A Size 10 Street West Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Sale Leicester LE5 4UN.
5: South Hall Travel 7 days a week. South Hall Travel 24 hours a day.
6: South Hall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: South Hall Travel. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
5: South Hall Travel can take you there.
8: Southall Travel, at all protected.
9: We're finally going home for the wedding.
10: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
11: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
10: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
11: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
10: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
11: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
12: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
13: I happen to happy valley, feeling like a Diwali.
14: It's back and it's bigger.
15: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vom Jewelers.
14: On Sunday, 1st November 2026, at the Ram Garia Centre.
15: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit DiwaliShoppingFestival.co.uk.
14: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
16: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
17: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colours TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lioncroft.
18: Cutthroat Ke Khiladi.
19: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
20: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
21: Four beers, please, garçon!
20: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.

0: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
1: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
2: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. 7 stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk.
3: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
4: Suno ek tarana, naya ek fasana, ke aangan mein mere... सवेरे सवेरे

0: सुंदर गाना जीने की राह फिल्म का गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, और ये था हमारे आज के सवाल वाला गाना, जितेंद्र और तनुजा और संजीव कुमार की फिल्म। अब आप सब लोग को पता चल गया होगा कि आज का गाना कौन सा था। कुछ साथियों ने जवाब सही नहीं दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, फिकर नॉट, ये गेम तो हम जस्ट फॉर फन खेलते हैं। और अब बस क्या, जाने की बेला आने ही वाली है।
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. ये है Laika Radio. Laika Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो 1 pound आज आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Laika Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download LemFi now. T's and C's apply. Laika Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Laika Radio.
0: So gold rate is 105.63 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Laika Radio.
1: This is the Laika Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: जी हाँ बिल्कुल, अब हो गए हैं 12:50 और अगला गीत आप सबको ले जाने वाला है न्यूज तक। न्यूज के उस पार आपकी मुलाकात होगी अनुराग से लाइका गोल पर, आनंदी होंगी लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर एंड फजीला आपका साथ देंगी लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर। लेकिन मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी। थैंक यू सो मच ढेर सारे मैसेज भिजवाने के लिए। थैंक यू असद जी, आपका मैसेज मुझे मिला है, आप शो को एंजॉय करते हैं और आपने गाना सजेस्ट किया है। मैं कोशिश करूंगी कि वो गाना आने वाले प्रोग्राम में ज़रूर बजाऊं। पहले तो मैं उसे चेक करूंगी वो हमारे पास है या नहीं, और अगर होगा तो ज़रूर आपको सुनवाएंगे। एंड थैंक यू सो मच बॉबी जी, आपको भी जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयाँ। आई एम श्योर कल जन्माष्टमी का त्यौहार आप सबने खूब धूमधाम से मनाया होगा। तो बस कल तक के लिए आप सबसे अब विदा लेने का समय हो गया है। एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और बस जब भी समय मिले हमें सुनते रहिए। कल तक के लिए आप सभी को मेरी बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।
3: हे देयर, मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट, कैच मी ऑन माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स विद ट्रिब्यूट्स, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने ऑन लाइक अ गोल्ड एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 PM टू 4 PM।
2: ये है
1: लाइक अ रेडियो। This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. 4 stars, 1 stage, 1 date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Aman Threeka, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 PM. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
4: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
5: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place.
6: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02 03.

0: अरे वी ड्रिंक बले बले ऑन द वीकेंड ब्लेस आर वी एवरीबॉडी द बेस्ट टू एंड गेट ग्रो आई नो आई एम ड्रिंक बले बले राइट हियर इन द स्टूडियो एंड आई विश यू वर हियर विद मी एनीवे स्टे विद मी आई हैव योर 90s थ्रोबैक वेरी वेरी सून
1: Goldrate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold is currently trading at £105.35 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278. Leica Radio. Weekend Bliss with Anandi Shah. Leica Radio.
2: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
3: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 से शुरू और हर्जमैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99.
4: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN.
5: One performer.
6: के सामने तो प्रोसन से कहते क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया खिलाड़ियों के खिलाड़ी.
7: Countless personalities.
8: जिंदगी बर्बाद हो गया.
9: A whole universe of entertainment.
10: फंक्शन रखा हुआ है.
11: Sunil Grover live UK tour 2026.
12: 29th October Ovo Arena Wembley London. 31st October Mattioli Arena Leicester.
13: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
14: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
15: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
16: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
17: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
18: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी. So now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
19: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
20: Dubai is the place. 11,
19: 11. Call the Danu Properties London office today on 02 03 963.

0: Today, 7 days a week on 0208 574 8410. Like a radio. Sarita Sabharwal.
1: Welcome to Sarita Sabharwal Show. मैं हूं अनुराग. थोड़ी देर के लिए सरिता जी की जगह पर. थोड़ी देर में वो अब तक आपसे होंगी रूबरू. फिलहाल बैक टू बैक गानों के साथ हो रहा है इस आवर का स्टार्ट. सुनते रहें.
2: Like a radio. Like a radio.
0: Let's return to the biggest hits back to back. This is Like a Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Like a Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Sarita Sabharwal.

0: गुड आफ्टरनून, सरिता सबरवाल हाजिर है आपकी सेवा में आज के प्रोग्राम के साथ। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं आप खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहे हैं, सेहतमंद रहें, ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जियो शान से, मुस्कुराते गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए। गाने तो चुन चुन कर लाई हूँ मैं। पहले दो गीत आपने सुने, कुछ कॉमन नहीं था, मींस कोई वर्ड नहीं था, यस, पर कुछ कॉमन था भी। कॉमन ये था कि आज विधु विनोद चोपड़ा अपना बर्थडे मना रहे हैं। इज इंडियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर एंड एडिटर एज वेल। और इन्हें बहुत से अवार्ड्स भी मिले, नेशनल अवार्ड्स एंड 10 फिल्म फेयर अवार्ड्स। एंड ही इज़ नोन फॉर डायरेक्टिंग फिल्म सच एज क्राइम ड्रामा परिंदा इन 1989, पेट्रियाटिक रोमांटिक ड्रामा 1942 अ लव स्टोरी, एंड मिशन कश्मीर इन 2000, देन 12th फेल 2023 की फिल्म, मुन्ना भाई की सीरीज इन्होंने ही बनाई, 3 इडियट्स इन्होंने बनाई, पीके इन्होंने बनाई, एंड संजू भी इन्हीं के बैनर तले बनी थी। आज हम विधु विनोद चोपड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। 1942 अ लव स्टोरी के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत ही प्यारी सी फिल्म थी। अनिल कपूर, मनीषा कोइराला इन लीड रोल थे, इनके साथ साथ फिल्म में अनुपम खेर थे, जैकी श्रॉफ थे, एंड इट वाज आल्सो द लास्ट फिल्म टू हैव इट्स म्यूजिक कंपोज बाय लेजेंडरी आर डी बर्मन साहब। फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मिला था आर डी बर्मन साहब को उनके जाने के बाद एट द 40th फिल्म फेयर अवार्ड्स, एंड हिज फॉलोइंग टू फिल्म्स करीब एंड मिशन कश्मीर वर ऑल्सो क्रिटिकली कमर्शली सक्सेसफुल फिल्म थी। करीब भी बहुत प्यारी फिल्म थी जिसमें बॉबी देओल ने काम किया था, और दूसरा गीत मैंने बॉबी देओल की ही फिल्म करीब से चुना था। विधु विनोद जी ने इसे डायरेक्ट किया था एंड प्रोड्यूस भी किया था इसी फिल्म को। इसमें बॉबी देओल के साथ थी शबाना रजा एंड मौसमी चैटर्जी। बहुत प्यारी फिल्म थी। इस फिल्म का संगीत अनू मलिक का था। और क्या आपने फीमेल वॉइस को पहचाना, चोरी चोरी जब नजरें मिली? अगर आपने पहचाना इस आवाज़ को तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। अब सारे आवर में मैं विधु जी की फिल्मों के गीत इसलिए नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि इन्होंने ज़्यादा काम 1990s और उसके बाद 2000 ऑनवर्ड्स किया है। तो एक गीत और परिंदा का मैंने क्यों किया जो आप तक पहुँचाऊँगी ज़रूर, लेकिन आइए पहले ज़रा ये काम कर लें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई अगर इनके जरिए आप पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो काम बड़ा आसान है। यू कैन गो इनटू द ब्रांच, ऑनलाइन कर सकते हैं, और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप अगर आपने डाउनलोड किया है तो उसके ज़रिए कीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। और आज आपको एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले मिल सकते हैं मैक्सिमम 127 रुपीज़ एंड 15 पैसा।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with the biggest classics on Leica Radio. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
2: It's December. Thand ko bolo goodbye.
3: Join Maharaja Tours on a 14-night Caribbean cruise departing 6 December with direct Virgin flights from Heathrow to Barbados. Khoobsurat beaches, sunshine aur 8 amazing Caribbean islands aapka intezaar kar rahe hain. Prices from just £1,499 per person, twin share. Seats limited hai, to aaj hi book kijiye. Visit maharajatours.co.uk or call 07956154846.
1: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. on Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhvinder Vidali and his live band.
3: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
4: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
5: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
4: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर
6: It's back and it's bigger.
1: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
6: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
1: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
6: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
7: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भाई बहुत प्यारा गीत था जिसे मैंने चुना था फिल्म नर्तकी से, और महेंद्र कपूर साहब की खूबसूरत बुलंद आवाज में आपने इस गीत को सुना। लेकिन अगला गीत भी जबरदस्त है और उसे मैंने चुना है मेरे महबूब फिल्म से। कौन सा गीत हो सकता है, सोचिए सोचिए। वैसे मैं प्ले करने जा रही हूँ राइट नाउ।
0: दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: क्या बात है, ब्यूटीफुल गाना. और आप में से कुछ मेरे साथियों ने पहचान लिया था कि कौन सा गीत हो सकता है, क्योंकि इन दोनों गीतों में एक वर्ड कॉमन रहा और अगले गीत में भी वही वर्ड सुनने को मिलेगा. लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, बताने ये जा रही हूँ कि हियर इज अ मैसेज फ्रॉम मर्सिडीज बेंज वैन्स इन एसोसिएशन विद लाइका रेडियो नेटवर्क. हियर इज अ नंबर दैट शुड मेक यू सिट अप. Vehicle downtime costs UK businesses an average of £1,172 per van per day. That's why Mercedes-Benz Vans created the uptime promise, from roadside assistance and extended service hours to real-time vehicle diagnosis and more. They have a range of advantages designed to keep your businesses moving. Search Mercedes-Benz Vans, ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा, and today and discover their uptime promise. Learn more at mbvans.co.uk/uptime promise. और दूसरा मैसेज भी है एक और, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. आप जानते हैं कि आज हमारी टीम गई हुई है कहाँ पर, NKN, yes, Property Expo, जो एग्जीबिशन हो रही है. दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो ब्रॉट टू यू बाई NKN मीडिया इज बैक 5th and 6th September. आज वहाँ हो रहा है एट लंडन हिल्टन पार्क लेन में. आप भी जाना चाहें तो जरूर पहुंचेगा. फीचरिंग सेलिब्रिटी गेस्ट अरबाज खान, जैकलिन फर्नांडिस, चित्रगंधा सिंह एंड नरगिस फाखरी. फ्री एंट्री, रजिस्टर एट nknpropertiesexpo.com. Exclusive radio partner kaun hai? Leica Radio.
0: This is Leica Radio across the Midlands. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
1: Ji haan, another song.

0: Laika Radio.
1: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. One performer.
2: Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover, live UK Tour 2026.
1: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Laika Radio Network.
3: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का perfect destination. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी Falcon स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी हैं. Falcon स्नैक्स 300 ग्राम की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू. और हर्जमन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99.
4: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Cell Leicester LE5 4UN.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
6: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybon Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybon Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
7: लेस्टर नवरात्रि नी धमाकेदार रातों माटे थई जाओ रेडी. KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशंस प्राउडली प्रेजेंट्स नवरात्रि फेस्टिवल 2026 11th to 20th October लाइव फ्रॉम इंडिया. गरबा, डांडिया, म्यूजिक एंड ए फुल ऑन फेस्टिव वाइब्स एवरी नाइट फ्रॉम 7 PM एट अवंती फील्ड स्कूल लेस्टर. टिकट्स जस्ट 5 pounds से स्टार्ट. बुक योर टिकट्स नाउ ऑन टिकट सोर्स और कॉल बीजे 07957477330. रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो.
8: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
9: Have you noticed the way fans shout at football matches?
10: Oh, wake up!
9: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
11: Download the Laika Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
12: Sarita Sabharwal with your weekend classic.
11: Cranking out the biggest hits for the capital. This is Laika.

0: Once a week on 0208 574 8410. LYCA. This is Leica.
1: प्रोग्राम के सेकंड आवर में आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ फर्स्ट आवर आपने इंजॉय किया, जिन मेरे साथियों ने मेरा साथ दिया और अपने मैसेजेस भी मुझ तक पहुँचाते रहे, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। इफ़ यू हैव जस्ट जॉइन मी तो कल जरूर 4 बजे स्टार्ट कीजिएगा बैक टू बैक दो गाने।
0: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Sarita Subble.

0: फिल्म तवायफ से आपने सुना आशा जी की आवाज में गाया हुआ ये गीत 1985 की फिल्म थी। बैक टू बैक दो गीत मैंने शामिल किए। पहला गीत था आदमी खिलौना है, इस फिल्म से जो 1993 में रिलीज हुई थी। तो इसे शामिल करने की एक वजह ये भी थी कि ये फिल्म 3rd of September 1993 को रिलीज हुई थी। सो 3rd को मेरा शो नहीं था, इसलिए मैं सोचा कि फिल्म के गीत अच्छे हैं तो क्यों ना प्रोग्राम में शामिल किया जाए। तो आदमी खिलौना है का गीत मैंने शामिल किया। इस फिल्म में जितेंद्र गोविंदा, मीनाक्षी सुशौत्री ने काम किया था, जी ओम प्रकाश साहब ने बनाई थी ये फिल्म, नदीम श्रवण का था संगीत। और दूसरा गीत मैंने जो चुना फिल्म तवायफ से, एक्चुअली ये फिल्म 6th of September यानी कि कल संडे को ये रिलीज हुई थी 1985। सो 85 के दो फिल्मों के नाम थे मेरे पास, तो मैंने सोचा आज एक सुना देती हूँ और कल दूसरा सुना दूंगी। तो आज मैंने तवायफ फिल्म का ये गीत आप तक पहुँचाया। ऋषि कपूर एंड रति अग्निहोत्री ने इस फिल्म में काम किया था, साथ में पूनम ढिल्लन भी थी। बी आर चोपड़ा साहब ने बनाई थी ये फिल्म एंड रवि जी का संगीत था, हसन कमाल ने लिखे थे सारे गीत इस फिल्म के। उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने पसंद किए। इफ़ यू हैव जस्ट जॉइन मी तो आपका स्वागत करती हूँ और आपको दो गीतों की मैं चॉइस दे रही हूँ। अब मैं कुछ एक गीत सलील चौधरी जी के कंपोज किए हुए प्रोग्राम में शामिल करने जा रही हूँ। उनकी डेथ एनिवर्सरी पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। तो एक फिल्म थी अनोखी रात, जिसके गीत उन्होंने कंपोज किए थे। उन दो गीतों में से एक गीत आपने चुनना है। पहला गीत है ओ रे ताल मिले नदी के जल में, ये गीत मुकेश जी ने गाया था। और दूसरा गीत है मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, ये गीत गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने। रेयरली ये गाने प्ले होते हैं, तो इन दोनों गीतों में से कौन सा गीत आपके दिल के करीब है मुझे आप जल्दी से व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। ए ओरे ताल मिले नदी के जल में, एंड दूसरा है बी मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। जो भी आपके दिल के करीब है जल्दी से बताइएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट भी, अगर SBI UK के जरिए पैसे आप इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आज आपके 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले 127 रुपीस और 15 पैसा आपको मिल सकते हैं। और डोंट फॉरगेट कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं ब्रांच में जाके ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: Okay, offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio.
2: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS. For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: Function lakha hua hai. Birmingham. Get ready as Surinderella is back for 2026. Rifko Theatre Company's smash hit Dirty Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed Dirty Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rifkotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
4: We're finally going home for the wedding.
5: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
6: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220-plus destinations with 4G and 5G where available.
6: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
6: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
7: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
8: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
9: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर Travel Mantra.
10: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिज, है ना?
11: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
10: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
7: इट्स हियर. Leica Radio is now broadcasting Birmingham wide on full scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group.
12: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
13: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
12: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
14: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit heartyhanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit heartyhanks.com today.
7: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: राइट भी सलील चौधरी जी की कॉम्पोजिशन आपने सुनी और ज़्यादातर वोट्स इसी गीत को मिले थे. भारती जी, स्वीटी कालरा जी, निर्मलन कीर्ति जी, हरीश रूडा जी, रानी इन स्लॉ, विजय गुदरे इन सटन, संतोष इन हैरो, मीना जी, भारती डी जी, रोशनी जी, फरजाना जी, हाना इंतशाब, ओम प्रकाश लाल जी एंड हिमांशु पटेल, आप सबका तय दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. सलमा मेडस्टोन में सुन रही है, श्वेता जी, जयंत एंड मीना जी, उल्लास इन टोरंटो, दिव्या इन हैरो, हंसा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत लंबी लिस्ट है, आई एम सो सॉरी कि मैं सारे नाम नहीं ले पाऊंगी. और सलील चौधरी जी का संगीत अपने बहुत बहुत दफ़ा सुना होगा, बहुत प्यारे प्यारे गीत सुने होंगे. आज ही के दिन 1995 को सलील चौधरी जी इस दुनिया से विदा हुए थे. लेकिन संगीतकारों की उम्र उनकी सांसों से तय नहीं होती है. शाम ढलते ही कहीं से कहीं दूर जब दिन ढल जाए सुनाई देता है. पहली बार पहली बारिश में मन अपने आप भी कहने लगता है, ओ सजना बरखा बहार आए. गुनगुनाने लगते हैं हम अचानक से प्यारे प्यारे गीत, जिंदगी कैसी है पहेली हाय. बहुत प्यारे प्यारे गीत इन्होंने कंपोज किए और मेरी कोशिश है कि कुछ एक गीत मैं प्रोग्राम में शामिल करूं और वो गीत आपके मन को भा जाए. तो आइए बढ़ते हैं आगे.
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Sarita Summerwall with the biggest classics on Lyca Radio.
2: जी हाँ, आपकी सेवा में इस वक्त प्रोग्राम पेश कर रही हूँ और मेरा साथ रहेगा टिल 7 o'clock. जहाँ भी बैठे, जिस हाल में भी बैठे हैं, उम्मीद करती हूँ इंजॉय कर रहे हैं आप प्रोग्राम को. राइट, लाइक का एक्स्ट्रा के बारे में थोड़ा सा बता दूँ. पॉडकास्ट एपिसोड 32 आप देख सकते हैं, होस्टेड बाय रवि शर्मा जी. इन दिस स्पेशल एपिसोड रवि शर्मा सिट्स डाउन विद द रिनाउंड आर्टिस्ट मोहम्मद वकील टू एक्सप्लोर द स्टोरी बिहाइंड हिज म्यूजिकल जर्नी. देखना चाहते हैं तो लाइक का एक्स्ट्रा पॉडकास्ट देखिएगा, अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजॉन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म.
1: Lyca Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. Sarita Summerwall with the biggest classics on Lyca Radio.

0: What a beautiful, beautiful song. और उम्मीद करती हूँ आप सभी ने enjoy किया. वैसे हर गीत के बाद मुझे यही मैसेज मिल रहा है, oh this is one of my favorites, thank you. अर्जुन जी आप भी अभी अभी आए हैं. एंड स्वीटी कालरा जी आपने कहा मेरा भी another लाजवाब track है ये और मेरा मनपसंद गीत है. थैंक यू देशराज जी, थैंक यू. आपका भी बहुत बहुत बहुत सारी जानकारी भी आपको मालूम होती है और आप मुझ तक पहुँचाते हैं. थैंक यू एवर सो मच. एंड सरोज जी थैंक यू आपका भी. सुनील चौधरी जी के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है कि वो हमेशा स्टोरी को पहले सुनते थे, कैरेक्टर सुनते थे और उसके बाद गीत को सुनते थे, फिर उसके लिरिक्स सुनते थे, फिर धुन बनाते थे. खेत में काम करता किसान, सड़क पर रिक्शा खींचता मजदूर और बेहतर संसार को सपना देखता नौजवान उनके लिए फिल्मी कहानी के किरदार नहीं थे, वो स्वयं उस संसार का हिस्सा बन चुके थे, रह चुके थे हिस्सा. शायद इसलिए उनकी धुनों में बड़ी करुणा करुणा आपको लगेगी हमेशा, कि बड़ी सिंपल सी उनकी धुने थी और थोड़ा सा दर्द छुपा हुआ था. उनके हिंदी सिनेमा में आने का किस्सा भी किसी फिल्म जैसा ही है. वो एक ऐसे किसान की कहानी लिख रहे थे जिसकी ज़मीन छिन जाती है और जो रोज़ी कमाने को कलकत्ता जाकर रिक्शा खींचता है. ऋषिकेश मुखर्जी को कहानी पसंद आई और उन्होंने इसे बिमल रॉय तक पहुंचाया. सलील साहब ने बिमल रॉय को कहानी सुनाई और यही कहानी बनी. कौन सी फिल्म थी वो? दो बीघा ज़मीन. ऐसे बहुत सी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं सलील चौधरी जी के साथ. काश की वक्त हो और मैं बहुत कुछ आपको सुनाऊँ, बताऊँ उनके बारे में, लेकिन देखते हैं क्या कर सकते हैं. अब ज़रा जल्दी से ये भी बता दूं कि उस्ताद राहत फ़तेह अली खां आ रहे हैं. TCO प्रेजेंट्स उस्ताद राहत फ़तेह अली खां, अ ट्रिब्यूट टू हिज अंकल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां ऑन हिज 30th डेथ एनिवर्सरी. वन डेट ओनली, संडेज 18th अप्रैल 2027. अभी से बुक कर लीजिए. O2 लंदन रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो. और वहीं लखवीर वडाली भी आ रहे हैं, पंजाबी लेजेंड लखवीर वडाली. फ्राइडे 16th अक्टूबर को क्रिस्टल ग्रैंड स्लाउ एंड संडे को 18th अक्टूबर को इन एट ICC बर्मिंगम में परफॉर्म करने वाले हैं. अगला गीत इन मैसेजेस के बाद.
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: ये है
3: Leica Radio.
2: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू. और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99. फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE54UN.
4: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
5: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
6: Dubai is the place. 11, 11.
5: Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
7: Danube 11, 11. Danube Properties.
8: The wait is finally over.
9: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
8: Mirzapur is coming to the big screen.
10: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
8: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
11: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
8: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie in cinemas now.
12: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Adil ji. Dusra koi nahi khulega.
5: London, get ready for an unforgettable night.
3: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
5: comes to the O2 Arena, London on 18th April 2027.
3: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
5: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
3: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
5: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
12: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
13: हेलो यूके वालों बिग बॉस इज बैक और इस बार सबको मिलेगा वरदान ऑफ एक्स्ट्रा जीवन दान तथा टू मेरी जान एक्स्ट्रा लाइफ एक्स्ट्रा मौका मतलब एक्स्ट्रा ड्रामा और एक्स्ट्रा धोखा स्ट्रीमिंग फ्रॉम 6th सितंबर ओनली ऑन जियो हॉटस्टार एंड कलर्स
1: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रागासन
2: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-1801. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
14: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
1: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. On this week's Leica Extra podcast, Ravi Sharma talks to singer Mohammed Vakil, winner of Sa Re Ga Ma Pa.
15: अगर हम सामने वाले की इज्जत करेंगे अपने बड़े की अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे जमाना हमारी इज्जत करे और जिसने अपने गुरु की और माँ बाप की दुआ दे दी उसको आगे जाने से रोक बड़े पंडितों उस्तादों का कहना है कि संगीत अपने आप में एक ऐसा काम है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून पहुँचाता है
1: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. The Leica Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: कभी तो हंसाए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: चलिए भाई एक बार फिर से आपको करेंसी का रेट बता दें इन केस यू आर थिंकिंग ऑफ ट्रांसफरिंग मनी। इंडियन रुपीस मिलेंगे आपको लेम्फाई वाले दे रहे हैं इंडियन रुपीस एक पाउंड के बदले 127.73 अफगानीज 87.41 पाकिस्तानी रुपीस 374.98 बांग्लादेशी टका 166.65 एंड श्रीलंकन रुपी 443.49 यूएस डॉलर्स 1.35।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Summerwall with the biggest classics on LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
2: राइट भाई, आज गोल्ड का रेट है मार्केट में 105 pounds and 63 pence पर ग्राम।
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7am Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
2: चलिए ये तो दीप राजा जी ने अपने बारे में बता दिया कि उनका शो जरूर सुना करें एवरी वीकेंड पर। वैसे 2400 घंटे आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। लाइक अ रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर में सुना जाता है, मिडलैंड्स में सुना जाता है, जहां भी हैं आप कहीं भी सुन रहे हैं, चाहे वो 10:35 AM पर हमारे लाइका गोल्ड को सुन रहे हैं लंदन में, DAB पर, अलेक्सा, गूगल होम एंड LikaGold.com के जरिए। और मेरे बाद आते हैं हमेशा सैटरडे एंड संडे को कौन, विंटेज गोल्ड लेकर सैंडी शाह। लेकिन आज सैंडी नहीं आ रहे हैं, उनकी जगह होंगे अभिषेक आपके साथ टिल 7 o'clock टिल 10 o'clock। उसके बाद हमारी गोल्ड नाइट्स होती हैं, ओवरनाइट सर्विस, जिसे बहुत पसंद किया जाता है। बैक टू बैक म्यूजिक आप सुन पाते हैं और इन्जॉय करते हैं, तो वो भी ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। और अब चल रहे हैं, आगे बढ़ लें।
1: Leica Radio।
2: जी हाँ, लाइका गोल्ड आप सुन रहे हैं। और अब वक्त है कि मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और आपको सलील जी के बारे में भी दूं, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। पर उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि एग्जैक्ट डेट किस, कब वो और कौन से साल में उनका जन्म हुआ था। आज वैसे विदु विनोद चोपड़ा जी का हमने बर्थडे मनाया, कुछ एक गीत मैंने शामिल किए। दैन इरशाद कामिल हैं एक लिरिसिस्ट, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं, उनका भी बर्थडे आज ही है। 1971 में बॉर्न हुए थे, लेकिन 90s के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। देन पंकज त्रिपाठी इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। मदर ट्रीसा वॉज बॉर्न ऑन 26th of August, लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि है, तो आज हम उनको भी याद करते हैं, जिन्होंने देश के लिए, दुनिया के लिए और बहुत ही चैरिटी के लिए काम किए। आपके मैसेजेस भी बराबर मेरे पास हैं, थैंक यू। इसी तरह से सुनते रहिए, साथ देते रहिए, और मैंने बहुत से मैसेजेस का जवाब भी दिया है। एंड विमल रायन जी, आपने भी अभी अभी ज्वाइन किया है। एंड रजिंदर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन जी, आप भी सुन रहे हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे।
1: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. 4 stars, 1 stage, 1 date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Aman Trika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7pm. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: इस हफ्ते की हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक है माला सिन्हा, जिन्होंने बहुत सी प्यारी प्यारी फिल्मों में काम किया और मैंने आज चुना 1961 की फिल्म माया से ये गीत और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने पसंद जरूर किया।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: ये है Leica Radio.
3: बिग बॉस के जो प्रेमी हैं उन्हें बता दें कि द 20th सीजन ऑफ बिग बॉस इज बैक, होस्टेड बाय सलमान खान. द शो इज एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार फ्रॉम दिस संडे यानी कि 6th of September यानी कि कल से. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार विल स्ट्रीम एवरी एपिसोड एंड अलोंग विद द लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 हाउस. जियो हॉटस्टार इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी. ये इन्फॉर्मेशन भी नोट कर लीजिएगा. द दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो ब्रॉट टू यू बाय NKN मीडिया इज बैक 5th and 6th September यानी आज और कल होगा एट लंदन हिल्टन पार्क लेन एंड फीचरिंग सेलिब्रिटी गेस्ट अरबाज खान, जैकलिन फर्नांडिस, चित्रगंधा सिंह एंड नरगिस फाकरी. फ्री एंट्री रजिस्टर एट NKNPropertyExpo.com. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं Leica रेडियो.
0: This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel. Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.com.
1: ये है लाइका रेडियो।
2: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू। और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
3: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN।
4: नमस्कार, मार्च 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટ સીઈંગ, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર £4,499 પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે. સીટ્સ લિમિટેડ છે, એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો. મહારાજા ટૂર્સ, તમારો વિશ્વસનીય ટ્રાવેલ પાર્ટનર. જાપાન તમારી રાહ જોઈ રહ્યું છે.
5: It's back and it's bigger.
6: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
5: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
6: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
5: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: हे प्रभु तुम देवता.
9: दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
10: बुक नाउ ऑन diwalistory.com. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
0: लाइका रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासान. From Sutton Coldfield to Handsworth, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
11: From Southall Street to the London Rain. From the Tube to your sofa again. UK, the big bang of entertainment. Jio Hotstar is here. Blockbuster movies, the latest shows, best of reality shows, and stars you know. From stories that thrill to moments that delight, there's something new to watch every night. So get ready. Jio Hotstar is now live in the UK.
12: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 Belgrave Road, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में।
13: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
14: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk.
15: Sarita Sabawal.
16: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: Sarita Sabharwal.
2: This is Leica Radio across the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: चलिए भी आपको जल्दी से बता दें कि इस वक्त करेंसी का रेट मार्केट में क्या चल रहा है, आपका एक पाउंड आपको क्या दिला सकता है, तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। एक पाउंड के बदले आपको 127 रुपीज़ एंड 77 पैसे मिल सकते हैं इंडियन करेंसी में। अफगानीज 87.45, पाकिस्तानी रुपीज़ 375.2, बांग्लादेशी टका 166.60 एंड यूएस डॉलर्स 1.35।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with the biggest classics on LEICA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
3: चलिए भी आपको बता दें कि गोल्ड का रेट आज मार्केट में क्या है, 105 pounds and 63 pence का एक ग्राम।
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
4: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए।
2: सरिता सबरवाल विद द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइका रेडियो।

0: ये था आज का कार्यक्रम। उम्मीद करती हूँ कि मेरा साथ आपने पसंद किया, मेरे चुने हुए गीत आपको पसंद आए। ये गाना भी बहुत खूबसूरत था जिसे मैंने दो उस्ताद फिल्म से चुना था। रेयर हिट्स होते हैं, कभी कभी प्ले होते हैं, और जब भी प्ले करते हैं हम तो आपके मैसेजेस मुझे बराबर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बड़े प्यार से आपने मेरा साथ दिया है। कल फिर मिलने का वादा है, लेकिन मैं बता दूं कि आज विंटेज गोल्ड प्रोग्राम सैंडी शाह नहीं बल्कि अभिषेक आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे मेरे बाद, और आप उनका साथ देंगे टिल 10 o'clock। इसके साथ साथ हमारी गोल्डन नाइट्स होती हैं, और गोल्डन नाइट्स में भी बहुत से अच्छे अच्छे गीत आपको सुनने को मिलते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। सो अब जाते जाते तो सरिता यही कहेगी कि कल मिलने का वादा है, तो कल मेरा साथ देने के लिए हाजिर हो जाइएगा। जिस इस जरिए से आप प्रोग्राम को सुनते हैं इसी तरह से सुनते रहिए। अपने जानने वालों को भी बताइएगा कि हमारा गजल चैनल भी आ रहा है, एंड हम बहुत जल्द बर्मिंगम में आ रहे हैं। सो बहुत एक्सपेंड कर हो रहा है, और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ साथ इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। माइक्रोफोन के इस तरफ से अब सरिता आपसे विदा लेती है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए लवली एंड सुपर्ब इवनिंग, एंड ऑफकोर्स टुमारो एज वेल।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar. One performer.
2: Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover, live UK Tour 2026.
1: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: South of Travel, 7 days a week. South of Travel, 24 hours a day.
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Southall Travel. Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel can take you there.
7: Southall Travel, at all protected.

0: Desi Vibe. Desi Vibe. Saturday nights come alive with Sonia.
1: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. One performer.
2: Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover, live UK Tour 2026.
1: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
4: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place. 11,
4: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
6: Danube 11, 11. Danube Properties.
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
8: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203 773 633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स your travel mantra.
9: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
10: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
9: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
10: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
9: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. मेक एवरीडे ग्रैंड.
12: Punjab, the biggest tunes.

0: Laika Radio.
1: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar.
2: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 pieces से शुरू. और हर्जमैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99.
3: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE54UN.
4: We're finally going home for the wedding.
5: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
6: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220-plus destinations with 4G and 5G where available.
6: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
6: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
7: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
8: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. मेक everyday grand.
10: Bollywood romantic hits throughout the night. This is the Love Sound.

0: Baker Radio.
1: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar.
2: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
4: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
5: It's back and it's bigger.
6: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
5: On Sunday, 1st November 2026 at the Ramgarhia Centre.
6: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
5: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
7: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11,
8: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
10: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
11: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
12: लेम्फाई मींस क्विक and safe way to send money.
13: LenFi means low transaction fees and great exchange rates.
12: LenFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
13: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LenFi. Download the LEMFI mobile app today.
14: LenFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
15: Raj Badin.
16: Hey up, it's me, Raj Badin. Don't forget to catch me every weekday afternoon between 4 and 7pm with Drive. All the usual grand musty, entertainment, business, sports, all the latest news headlines. Fused with the latest Bollywood blockbusters and of course the Punjabi hits. That's me, Raj Badin, on Drive.
0: Leica Radio. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.

0: Laika Radio.
1: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place. 11,
2: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
4: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410। दैट्स 8574 8410।
6: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
7: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October.
8: Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Laika Radio.